0: बिल्कुल उसके पीछे अमेरिका जुड़ा हुआ है,
1: क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी भी लोगों को कई मरतबा समझ में नहीं आती है।
0: उम्मत जो इसी धोखे में कैसे आ जाती है,
1: जो सुन्नी वर्ल्ड है ये बटे हुए हैं।
0: दीन की जो बुनियाद है विलायत, उसी को नहीं मान रही है।
1: इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ा बहरान है, वो लीडरशिप का न होना।
0: मुझे रोजा रखना है, मुझे जन्नत जानी है, उम्मत गई भाड़ में।
1: ये बातें आम लोगों को उमूमन नहीं पता।
0: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश करना चाहते हैं जो हिंदुस्तान की मीडिया में, खुसूसन मुसलमान मीडिया, मुसलमान हुवियत आइडेंटिटी के साथ एक मीडिया हाउस चला रहे हैं। 50 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और तमाम पेजेस को मिला के। और हमारे साथ हैं मिल्लत टाइम्स से शम्स तबरेज़ कासिमी साहब। सलामुन अलैकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको इस प्रोग्राम में।
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए और बातचीत का मौका देने के लिए।
0: जी, मैं एक सवाल आपसे करूंगा, अगर आप चाहें तो इसको
1: स्किप कर सकते,
0: जवाब ना भी दें और एक्सक्यूज भी कर सकते हैं। सुन्नी वर्ल्ड के अंदर ये आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी क्यों नहीं होती कि जैसे ही मसलन, बिल्कुल वाज़े सी बात है कि एक शख्स है जो आइसिस से जुड़ा हुआ था, उसके बाद उसको इस तरीके से पेश किया जाता है कि वो बनी उमैया का लीडर बन रहा है, बनी उमैया की मस्जिद में जा रहा है, वहाँ खुतबे दे रहा है, और बिल्कुल उसके पीछे अमेरिका जुड़ा हुआ है, अमेरिकन एयर सपोर्ट मिल रहा है, इज़राइल उसको सपोर्ट कर रहा है, इज़राइल ने एक हफ़्ते में उनके तमाम असलहों को नाबूद कर दिया। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद क्यों अक्सर सुन्नी, मैंने कि मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अक्सर उलमा इंटेलेक्चुअल्स, उनके दरमियान भी बार बार, ये एक बार चीज़ नहीं होती, बार बार ऐसी चीज़ें होती हैं, तो क्यों उसी चीज़ पे बार बार धोखा खा लेते हैं?
1: एक्चुअली जो आपने सीरिया का तस्करा किया शाम का, यकीनन शुरू में लोगों को लग नहीं रहा था कि इसके पीछे अमरीका है या इसराइल है। दूसरी तरफ लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि बशारुल असद के ख़िलाफ़ जो लड़ाई हो रही है वो आज से नहीं, 2011 से, जो अरब एस्पायरिंग है, अरब बहारिया, तभी से इसकी शुरुआत हुई थी, कई बड़े बड़े हमले हुए। तो अब तक हुआ नहीं था कि बशारुल असद के इख्तदार का अचानक ख़ात्मा हो जाएगा, देश छोड़कर जाना पड़ेगा, बल्कि अब तक लोगों को लग ही रहा था कि बशारुल असद के साथ अमरीका

0: क्योंकि आप देखिए कि शाम में कई मरतबा जो बागी ग्रुप है उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, और सबसे ज़्यादा शाम के लोगों को हिजरत करनी पड़ी, छोड़ के जाना पड़ा, कई मरतबा पूरा का पूरा इलाका तबाह हुआ। तो इसकी वजह से बशार अल असद के ख़िलाफ़ गुस्सा, नाराज़गी और ये सारी चीज़ें थी। और दुनिया का वर्ल्ड व्यू दो तरह से था, कुछ लोगों को ये लग रहा था कि अमरीका बशार अल असद के साथ है, बशार अल असद अमेरिका की ताकत के बगैर ये नहीं कर सकता। कुछ लोगों को लग रहा था कि रूस उसके साथ है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी भी लोगों को कई मरतबा समझ में नहीं आती है, वो किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, कब क्या कर रहा है।
1: तो देखिए, एक इसकी इसी के काउंटर में कि बशार अल असद लुबनान का और हिजबुल्ला का जो रास्ता है वो तो वाज़े था कि वो बशार अल असद के बग़ैर मुमकिन नहीं था, कि जो हिजबुल्ला की लड़ाई होनी थी इसराइल से तो बशार अल असद एक लिंक था, और इसराइल खुल के हमेशा से जिस चीज़ को ख़त्म करना चाहता था वो बशार अल असद था, यानी ये एक वो था। लेकिन आप कह रहे नहीं, एक नज़रिया ये था कि नहीं, जैसे बशार अल असद मिला हुआ था, लेकिन ये एक पॉइंट है उसका। दूसरा पॉइंट ये कि जिसको ला रहे हैं सामने उसका बैकग्राउंड आइसिस से जुड़ा होना, उसका बैकग्राउंड जो है, यानी वो एक बार के इवेंट से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उसूल हैं फैसला करने के, बसीरत के, यानी खुदा कुरान में उलिल अबसार जिसे कह रहा है कि मसलन वो बनो जो बसीरत वाले हैं, तो कैसे उम्मत मुस्लिमा इससे क्या लेसन लेगी कि अगली बार अगर अमेरिका ये धोखा देना चाहे, मसलन लीबिया में यही धोखा दिया गया, सद्दाम के साथ यही धोखा दिया गया, इराक़ में भी मसलन, फिर उसके बाद सीरिया में भी यही धोखा दिया गया, बार बार यही धोखा दिया जाता है, और बार बार उम्मत जो इसी धोखे में कैसे आ जाती है। और अगली बार जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम की भी हदीस है रसूल अल्लाह से भी है कि मोमिन वो है जो एक सुराख से दो बार डसा नहीं जाता। तो ये कि सीरिया की सिचुएशन को उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या लेसन है कि अगली बार हमें समझ में आए कि उम्मत मुस्लिमा के लिए क्लियर हो कि भाई जब अमेरिका कोई एजेंडा लेके आए तो इतनी बसीरत हो कि वो समझ सके कि वो उसका एजेंडा है ये।
0: बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही है। और सीरिया का जो मसला रहा ना पिछले कई सालों से, सीरिया खाना जंगी का शिकार, तो बशार अल असद के बारे में ख़ुद लोगों को कन्फ्यूज़न था। ये जो बातें हैं कि लबनान तक जो हथियार पहुंचता है वो सीरिया के रास्ते, ये बातें आम लोगों को अमूमन नहीं पता। लोगों को लग रहा था कि हिजबुल्ला की अपनी ताकत है, वो इसराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, और दो तीन जंगों में हिजबुल्ला ने तो बाज़ाब्ता इसराइल को शिकस्त खाने पर मजबूर किया है। ये जो बातें उमूमन आम लोगों को, पब्लिक को नहीं पता। उधर शाम से लोगों को मोहब्बत भी है, क्योंकि कुरान में अहादीस में जगह जगह मुल्क शाम का तस्करा है, कई हवाले से शाम को याद करता है। तो शाम से लोगों को अकीदत भी है, मोहब्बत भी है, और शाम पिछले कई सालों से खाना जंगी का शिकार था। उसके अलावा मुझे जो लगता है कि जो लोगों का नज़रिया बना होगा ये कि जब हमास और इसराइल की लड़ाई हो रही है या उसमें उधर ईरान भी है, उधर हिजबुल्ला भी है, तो कहीं पर डायरेक्ट सीरिया का रोल नज़र नहीं आ रहा था। अब देखिए, ईरान के एम्बेसी पर दमिश्क में हमला हो जाता है, ईरान के कई अहम तरीन कमांडर उसमें शहीद हो जाते हैं, और बशार अल असद ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। लगातार हमले इसराइल के सीरिया पर, और जब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था तो एक नज़रिया ये बन गया बशार अल असद को लेकर के कि ये इसराइल से मिला हुआ है। बल्कि एक बात ये भी सामने आती गई कि सीरिया में यानी दमिश्क में एम्बेसी पर जो हमला हुआ, अहम तरीन कमांडर की जो शहादत हुई, तो लोगों को लगा कि शायद बशार अल असद ने गद्दारी तो नहीं की है, जासूसी तो नहीं की है। शाम एक बाज़ाब्ता मुल्क है, उसके एयर स्पेस में कैसे गजा पर अगर इसराइल के फाइटर प्लेन आ जाते तो बात समझ में आती है कि उनके पास आर्मी नहीं है, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। लेकिन सीरिया में इसराइल जहाँ चाहता है घुस करके हमला कर रहा है, मार रहा है, और बशार अल असद की आर्मी उसका एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम है। तो लोगों को यही लगा कि बशार अल असद इसराइल से मिला हुआ है। और वो जो मतलब हमास के बारे में था पूरी दुनिया को, कल भी आज भी, कि हमास को अगर पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है तो वो ईरान है। तो जो हमास को सपोर्ट कर रहा है ईरान, उसके ही कमांडरों को सीरिया में मारा जा रहा है, बशार अल असद रोकने में नाकाम है। तो ये जो बातें थी उसने सबके नज़रिया को बदला कि बशार अल असद बिल्कुल अमेरिका का आदमी है, वो इसराइल से मिला हुआ है। और जब अचानक ये सब हुआ तो लोगों को और बातें समझ में आई कि बशार अल असद अब तक था, अब कैसे हो गया। तो ये चीज़ें थी मुझे लगता है जिसकी वजह से लोगों ने इस तरह का नज़रिया अपनाया।
1: जी, तो इससे क्या लेसन है, यानी ये बसीरत अफजाई के लिए निगाह से अगर
0: मुझे लगता है।

0: कि जो सुन्नी वर्ल्ड है ये बटे हुए हैं, इनका कोई अपना एक मुश्तरका रहनुमा और लीडर नहीं है। शिया वर्ल्ड में मैं एक अच्छी बात देख रहा हूँ कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अल्लामा खामनेई, मुझे लगता है अब सुन्नी वर्ल्ड भी उनको अपना लीडर और रहबर मान रहा है। तो उनका जो एक फैसला होता है, उनका जो एक फरमान होता है, उसको दुनिया भर के शिया अपना फैसला मानते, अपना रहबर मानते। सिर्फ ईरानी कौम नहीं, हिंदुस्तान में भी जहाँ शिया हैं वहाँ रहबरे मुअज्जम की तस्वीर लगी रहती है। सुन्नी वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। आप मुझे कोई एक नाम नहीं बता सकते पूरे सुन्नी वर्ल्ड में जिसको दुनिया भर के मुसलमान अपना रहनुमा मानता हूँ। अब हरमैन शरीफैन के इमाम हैं खाना काबा के, उन्हीं पर तनकीद करते हैं सुन्नी उलमाए कराम उनके बहुत सारे फ़ैसलों पर। तो न तो इंडिया में, न पाकिस्तान में, न दुनिया भर में जहाँ भी सुन्नी उलमाए कराम हैं उनमें से किसी एक को दुनिया भर में आइडियल माना जाता हो, रहनुमा माना जाता हो, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है किसी के बारे में तो आप बताइए मुझे।
1: वाज़े सी बात है, क्योंकि मुझे लगता है शम्स भाई इसके पीछे जो है ना एक दीन का नज़रिया जो है ना, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बाद दीन को एक इंडिविजुअल दीन बना दिया गया है। मुझे नमाज़ पढ़नी है, मुझे रोज़ा रखना है, मुझे जन्नत जानी है, उम्मत गई भाड़ में। यानी ये बोलते नहीं उम्मत गई भाड़ में, लेकिन नज़रिया ये है कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, अगर सुन्नत भी माननी है तो सुन्नत कपड़े दाढ़ी अपीयरेंस तक। लेकिन वही जालिम से मुकाबला, उम्मत साजी, खुदा ने कहा कान अन्नास उम्मतन वाहिदा, तुम्हें एक उम्मत बना के पैदा किया हूँ। निज़ाम रसूल अल्लाह ने अपने बाद जो विलायत का निज़ाम छोड़ के गए थे, या मसलन अहले सुन्नत के यहाँ खिलाफत का निज़ाम छोड़ के गए थे, कोई एक नज़रिया, लीडरशिप का नज़रिया। कोई कौम एक यानी एक दीन को मानती है और दीन की असास लीडरशिप की बुनियाद पे थी, और आज वही दीन मान रही है और दुनिया में करोड़ों की तादाद में है, और दीन की जो बुनियाद है विलायत उसी को नहीं मान रही है। यानी तो वो दीन जब इनफरादी हो गया, दीन इतना इंडिविजुअल हो गया, उसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, उम्मत और इमाम का कोई राबता नहीं है, तो नेचुरल सी बात है कि मुझे लगता है कि ये लीडरशिप का ना होना उसके पीछे, उससे ज़्यादा मुझे लगता है जो हमारे लिए ज़रूरी है उम्मत मुस्लिमा के लिए सोचना, कि उस निज़ाम इस्लाम के सिस्टम को उसकी तरफ तवज्जो देना। मुझे लगता है जब उसकी तरफ तवज्जो देंगे तो ज़रूरत पैदा होगी। अभी तो सबको जन्नत जाने के लिए कोई इमाम की ज़रूरत नहीं है ना।
0: नहीं, आप बहुत अहम बात कर रहे हैं। और इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ा बहरान है, वो लीडरशिप का ना होना, क़यादत का फुकदान। जब तक खिलाफत थी कम से कम खलीफा पर पूरी दुनिया मुत्तहिद थी, और खलीफा का जो फरमान था उसको एक फरमान के तौर पर, एक फ़ैसला के तौर पर देखा जाता था। हो सकता है किसी की राय उससे मुत्तफिक ना हो, लेकिन कम से कम एक इत्तेहाद के तौर पर उसको देखा जा रहा था। खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद उम्मत में अभी कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं है जिस पर सब लोग एक हो सके, मुत्तहिद हो सके, उनकी बात को आखिरी बात माना जाए। तो बहुत बड़ा बहरान है, क्राइसिस है, और इसका इजाला कैसे हो, इसके लिए लोग संजीदा कोशिश करें, इस पर अभी कोई कोशिश नज़र नहीं आ रही है। हालांकि मुझे लगता है कि आप तो दुनिया भर की बात छोड़िए, इंडिया के मुसलमान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया के मुसलमानों को ख़ुद क्राइसिस का सामना है, परेशानियों का सामना है। हर आने वाला दिन माजी के मुकाबले में बहुत ही ख़राब, बदतर होता जा रहा है, और इस सूरत हाल में, सिचुएशन में भी कोई एक लीडर नहीं है, कोई कायद नहीं, या तो कायद बेशुमार हैं या फिर कोई कायद नहीं है। तो बात होती है कि भाई इंडिया में मसला क्या है, क़्यादत का बहरान या फिर क़्यादत की बहुतात।
1: मुझे लगता है कि देखें, ये क़्यादत का मसला जो है ये निज़ाम से जुड़ा हुआ है, सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अगर आप एक क़्यादत चाहते हैं जिसके अंदर कोई सिस्टम नहीं हो, मैं हमेशा जो दोस्तान हैं उनकी जब गुफ्तगू होती है तो मैं कहता हूँ कि हमारी डिस्कशन ये है कि आपकी एक पॉलिटिक्स है और एक आपका कल्चर है, इसमें प्रायोरिटी किस चीज़ को है? कल्चर को। आप पॉलिटिक्स में तब कामयाब होंगे जब आप कल्चरली मजबूत बनेंगे, है ना। हम क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में कामयाब होना चाहते हैं, कल्चरली हम लोग ज़यीफ़ होते हैं, है ना। तो दीन का एक कल्चर है, खुद दीन जो निज़ाम इस्लाम है, हमने निज़ाम इस्लाम को नहीं मानने, हमें इनफरादी इस्लाम चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो जब हमारा दीन इतना इंडिविजुअलिस्टिक है तो वो सिस्टम की डिमांड नहीं कर रहा है ना। अब

0: सिस्टम की डिमांड नहीं कर रहा है तो वो सिस्टम के बगैर लीडर कहाँ से आ जाएगा? यानी सिस्टम में लीडर होगा ना, जैसे आपको एक कंपनी चलानी है, 10,000 एम्प्लॉई है, 10,000 एम्प्लॉई सब सोचें कि मैं अकेला हूँ, मैं इन्फरादी हूँ, मेरे को कोई लीडर नहीं चाहिए, हम लोग का जिसका जो दिल चाहेगा वो करेंगे, तो भाई उसको लीडर की ज़रूरत ही नहीं है। तो यानी ये अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं, और मैंने कई जगह ये गुफ्तगू की है कि जब तक हम इस बात की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे कि हम पॉलिटिक्स में जीत रहे हैं या हार रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे बीच में सिस्टम है या नहीं, और हमारे बीच में कोई लीडरशिप का निज़ाम है कि नहीं। क्योंकि अगर आपके पास लीडरशिप का निज़ाम नहीं है, पॉलिटिक्स जीत भी गए, मिसाल के तौर पर एक पार्टी हार गई एक पार्टी जीत गई, क्या फ़र्क पड़ेगा?
1: कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल तो लीडरशिप का निज़ाम है, क़्यादत का निज़ाम है, और आप जो बातें कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा अहम है, और खुदा करे हमारी कौम को मिल्लत को बातें समझ में आए। इस वक्त ना हर एक को कायद बनने का शौक़ है, या फिर अपना इनफरादी निज़ाम लोगों पर वो थोप रहे हैं, मुसल्लत कर रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया का एक मुश्तरक निज़ाम होना चाहिए, आलमी निज़ाम होना चाहिए जिसमें सबकी हिस्सेदारी हो, और अगर एक रहबर का कोई फ़ैसला आता है, लीडर का कोई फ़ैसला आता है, पूरी दुनिया उसको माने, और हमेशा इसकी अहमियत रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि अगर दो आदमी सफ़र कर रहे हो तो उन दो में से भी एक को लीडर बना लो, एक को इमाम बना लो, ताकि आपस में इख्तलाफ ना हो, उनकी पैरवी करो। अल्लाह के रसूल का तो ये भी फरमान है कि अगर तुम्हारा रहबर या तुम्हारा लीडर किसी वहशी ग़ुलाम को बना दिया जाए तब भी उसकी इताअत करना ज़रूरी है। तो अभी जो हमारा मसला है, लीडरशिप का फ़ुकदान, क़्यादत का फ़ुकदान, कोई लीडर है तो दूसरा उनकी बात मानने को तैयार नहीं कि कौन होता है लीडर बनने वाला। तो ये मुझे लगता है कि इज्तिमाई शऊर को डेवलप करने की ज़रूरत है, क़्यादत को मानने की ज़रूरत है, और हम आप जैसे लोग अगर इस पर गुफ्तगू करेंगे,
0: इंशाल्लाह
1: अपनी कौम को, कम्युनिटी को इसका एहसास दिलाएंगे कि हमारा एक लीडर होना चाहिए, लीडरशिप का निज़ाम डेवलप होना चाहिए कि किस तरह लीडर बने। अगर यहाँ लीडरशिप पैदा हो भी रही इंडिया में ना, तो वहाँ विरासत है लीडरशिप में,
0: मौरूसी है,
1: तो वो जो विरासत के कल्चर ने भी लीडरशिप के सिस्टम से हमारी कम्युनिटी के, हमारे निज़ाम के एतमाद को मजरूह कर दिया है। कोई बोलता भाई वो उनका बाप अगर लीडर था तो उसके बाद कोई और लीडर होना चाहिए जिसके अंदर सलाहियत थी, तब उनका बेटा ही उनकी जगह लीडर बनेगा। तो इन चीज़ों मतलब
0: बेटा बन सकता है अगर सलाहियत हो,
1: सलाहियत हो, काबिलियत हो।
0: अब मुश्किल ये है कि बेटा है लेकिन सलाहियत नहीं है फिर भी लीडर है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई गुफ्तगू की उम्मत मुस्लिमा की। एक बड़ी मुश्किल जो है इस वक्त लीडरशिप की मुश्किल है, और वो लीडरशिप या निज़ाम विलायत, और कि मसलन आप किसी को अपना वली बनाए, लीडर बनाए, इन्नमा वलियुकुम अल्लाह, खुदा ने कुरान में वाज़ेह तौर पर कहा है, यानी वो निज़ाम जो है अल्लाह वली है, रसूल वली है, और उलिल अम्र वली है, यानी वो जो एक निज़ाम जो अल्लाह ने दिया था उस निज़ाम से उम्मत दूर हो गई है, और वो दीन इनफरादी, बस तुम नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो। एक लड़के से मेरा डिस्कशन हो रहा था, वो कह रहा था कि आगा हम लोग जो हैं कुरान नहीं पढ़ते, इसके लिए हम हमारी कौम पीछे है। मैंने कहा भाई सऊदी में देखिए कुरान ही कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने की कमी है वहाँ पर,
1: रमजान आ रहा है, कुरान की तिलावत हो गया,
0: हाँ, हिल हिल के पढ़ेंगे, समझेंगे कुछ नहीं, यानी कुरान में लिखा क्या है, कुरान को समझो, कुरान समझने के लिए आया, हिल हिल को पढ़ने के लिए नहीं आया है। बस ये जो मैंने कहा वो कुरान इतना पढ़ रहे हैं, कुरान समझ कितना रहे हैं, जब तक कोई दीन के सिस्टम को नहीं समझेगा और दीन को एक सिस्टम की तरह अपनी कौम में इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, जब तक दीन फ़ायदा नहीं
1: देगा। हुआ क्या है आगा के ये जो खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ या धीरे धीरे जो मुसलमानों का जवाल आया, यूरोप का कल्चर, अमेरिका का कल्चर पूरी दुनिया पर हावी होता गया, जमहूरी निज़ाम, सेकुलर निज़ाम, तो फिर मुस्लिम दुनिया ने और मुसलमानों ने भी दीन को, मज़हब को सिर्फ नमाज, ज़कात, हज यानी इबादत तक महदूद कर दिया,
0: इंडिविजुअल
1: सियासत से और या जितने सारे सेक्टर है वहाँ उन्होंने इस्लाम को बिल्कुल अलग कर दिया। अब सियासत की बातचीत होती है तो जो मुसलमानों के दानिशवरान हैं वही कहते हैं कि इस्लाम का सियासत से कुछ भी लेना देना नहीं है। इकनॉमी की बातचीत होती तो कहती है कि इस्लाम के पास कोई माशी निज़ाम नहीं है। समाजियात पर गुफ्तगू होती है तो कहते हैं कि इस्लाम का कोई समाजी निज़ाम नहीं है। तो हमारी कम्युनिटी ने, हमारे लीडर्स ने मज़हब को इबादत तक
0: महदूद
1: कर दिया है ना, ये सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है मिल्लत को, कौम को। और इसी वजह से जो इस्लाम का एक वसी पैगाम था उससे दुनिया महरूम होती जा रही है।

0: मैं चाहता हूँ एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप दें इस वक्त, क्या क्या आप काम कर रहे हैं, किन कौन से चैनल्स हैं इस वक्त, ताकि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाए।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मिलर टाइम्स दरअसल एक मल्टीलिंगुअल डिजिटल मीडिया हाउस है और हम लोगों ने शुरुआत की थी न्यूज़ पोर्टल से। उर्दू वेबसाइट सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्च किया, फिर हिंदी में वेबसाइट, उसके बाद अंग्रेज़ी में मोबाइल ऐप, फिर 2019 में हम लोगों ने यूट्यूब चैनल शुरू किया। तो मिलर टाइम्स इस वक्त तीन जुबानों में वेबसाइट है, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, जहाँ ताज़ा तरीन खबरें हम लोग पब्लिश करते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनर वीडियोस बनाना या डॉक्यूमेंट्री बनाना, इंटरव्यूज़ करना, करंट अफेयर्स पर ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करना, इस तरह की वीडियोस भी हम लोग बनाते हैं, यूट्यूब पर इस तरह की वीडियोस को अपलोड करते हैं। इसके अलावा हम लोग का जो न्यूज़ पेश करने का तरीका है, तो एक और है पोस्टर की शक्ल में, ग्राफिक की शक्ल में, जो लेटेस्ट अपडेट होती है, दो लाइन की न्यूज़ है, तीन लाइन की न्यूज़ है, किसी का स्टेटमेंट है। तो इस तरह मीडिया के जो भी तकाजे हैं उन तमाम चीज़ों को हम लोग लेकर चल रहे हैं। हमारा फोकस सिर्फ यूट्यूब पर नहीं बल्कि यूट्यूब से ज़्यादा वेबसाइट पर या शॉर्ट न्यूज़ पर, ग्राफिक पर है, और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर हमारी चीज़ें अपडेट होती है। जो पिछले 4-5 महीनों में जो हमारी मंथली रीच आई है, तो एवरेज जो है 2025 का हमारा रहा 250 मिलियन मंथली रीच का, तमाम को मिला करके, फेसबुक की रीच, इंस्टाग्राम की रीच, यूट्यूब की रीच, ट्विटर की रीच। तो इस तरह 250 मिलियन की मंथली रीच अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में रही है और अभी भी यह सिलसिला जारी है। और मिलर टाइम्स के अलावा भी कुछ चैनल्स हम लोगों ने बैकअप के तौर पर शुरू किए, जैसे फ़लस्तीन की वीडियोस को लेकर के कई मरतबा यूट्यूब ने नोटिस भेजा या स्ट्राइक लगा दिया, वीडियो डिलीट कर दिया, तो हम लोगों ने एक बैकअप चैनल बनाया पब्लिक फेस के नाम से। अभी हम लोगों ने एक और बैकअप चैनल बनाया है मिल्लत क्लिप्स के नाम से, कि लॉन्ग वीडियोस वहाँ जाती है तो कुछ क्लिप्स यहाँ पर अपलोड हो जाए। इसी तरह शॉर्ट फॉर्मेट की वीडियोस के लिए एक मिल्लत टीवी है। तो इस तरह कुछ दूसरे चैनल्स भी हम लोगों ने बनाए हैं इन दिनों।
0: जी माशाल्लाह। तो शुरू करते हैं एक जर्नी आपकी। हमारे दोनों के बीच में कुछ कॉमन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम दोनों मदरसे से, मदरसे के बैकग्राउंड में भी हैं, यानी मैंने पहले ग्रेजुएशन किया फिर मदरसा गया, तो मदरसे का एक बैकग्राउंड है आपका। और साथ में ही हम लोग दोनों भी मीडिया पे फोकस करते हैं, मीडिया में काम करने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि मदरसा पढ़ने के बाद आपने क्या पढ़ा और उसके बाद आपको क्यों ज़रूरी लगा कि मीडिया में काम करना चाहिए और कहाँ से ये बात शुरू हुई।
1: जी बिल्कुल, जो मेरी जर्नी है तो सबसे पहले मैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िला से ताल्लुक़ रखता हूँ।
0: कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी है।
1: जी, तो बिहार बदनाम भी बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल, तो बिहार का मैं रहने वाला हूँ ओरिजिनली, और मेरी जो शुरुआत हुई मदरसे से हुई। मतलब सबसे पहले मैं किसी स्कूल में नहीं गया बल्कि मदरसे में गया। मेरे जो बड़े भाई थे उनमें से एक का इंतकाल भी हो गया, तो मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे, तो मेरे वालदैन मुझे स्कूल में भेजना चाह रहे थे और मैं मदरसे जाना चाह रहा था। एक मरतबा वो जा रहे थे तो मैं उनके पीछे दौड़ता हुआ गया, काफ़ी बच्चे की बात, इतना सबस मुझे याद है। तो फिर बाद में एक मदरसे में मेरा दाखिला हुआ, मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया, फिर दूसरे मदरसे में गया तो वहाँ से मैंने अरबी की तालीम हासिल की, जिसको मौलवियत या फजीलत कहा जाता है। फिर दारुल उलूम देवबंद आया, वहाँ दाखिला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारी मदरसा कम्युनिटी है, तो मदरसा में पढ़ने वालों की ख्वाहिश होती है कि दारुल उलूम देवबंद में दाखिला हो जाए तो सारी चीज़ें मिल गई। वो उस वक्त की एक ये सोच होती है। तो दारुल उलूम देवबंद में दाखिला हो गया, तो जब मैं पढ़ रहा था मदरसे में, फिर दारुल उलूम देवबंद आ गया, तो पढ़ने लिखने में ज़्यादा मेरी दिलचस्पी थी। अंजुमन होती है तलबा की कि वहाँ आपको तकरीर की मशक करनी है, तहरीर की मशक करनी है, तो ज़्यादातर मैं सेक्रेटरी की या सदर की ज़िम्मेदारी लेने के बजाय जो वॉल मैगज़ीन होती है, दीवारी पर्चे होते हैं, उसके एडिटर की ज़िम्मेदारी मैं ले लेता था। वहाँ आर्टिकल लिखने का ज़्यादा मौका मिलता था, कोई नहीं लिख रहा है तो अपना ही आर्टिकल लिख करके सारे में लगा दो। तो इस तरह दिलचस्पी बढ़ती गई। दारुल उलूम देवबंद से तालीम मुकम्मल हो जाने के बाद 2 साल का अंग्रेज़ी का डिप्लोमा मैंने वहाँ किया। और इसी वजह से क्या, क्योंकि मेरी ख़बरों में दिलचस्पी थी, उर्दू न्यूज़पेपर में पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि उर्दू अखबार में जो ख़बरें आती है वो 2-4 दिन पुरानी होती है, अंग्रेज़ी से तर्जमा होकर के उर्दू में आती है। उस वक्त ये AI का ज़माना भी नहीं था, ना इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आई थी, 2012-13 की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल मैंने दारुल उलूम देवबंद में ही अंग्रेज़ी ज़ुबान का शोबा है 2 ईयर्स का, और मरकज़ुल मारिफ़ मुंबई से वहाँ से शुरुआत हुई थी, तो वो मैंने किया। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मैंने ग्रेजुएशन किया अरबिक से। मुझे लगा कि उर्दू तो जानता ही हूँ तो अरबिक से हमें ग्रेजुएशन करना चाहिए, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि मीडिया में आना है। ये था कि लिखना है, आर्टिकल लिखना है, अखबारात में छपने का शौक़ था। जब मैं दारुल उलूम देवबंद में पढ़ रहा था तभी मेरे वीकली कॉलम रोज़नामा सहारा में छपने लगे, आलमी सहारा में, इनकलाब में, और उस वक्त के दूसरे उर्दू अखबारात थे, रोज़नामा खबर एक निकल रहा था, वहाँ भी मेरा वीकली कॉलम छपने लगा। मिडिल ईस्ट में मेरी ज़्यादा दिलचस्पी थी, मशरिक़ वस्ती के हालात पर, तो उस पर भी मैं लिखता था। तो जब मैं दिल्ली

आया और ग्रेजुएशन मुकम्मल हो गया, तो उन्हीं दिनों मेरे एक दोस्त ने बताया कि एक न्यूज़ एजेंसी है INS इंडिया, और वहाँ एक जगह खाली है ट्रांसलेटर की, क्या आप जॉब करना चाहोगे? तो मैंने कहा ज़रूर, जॉब की ज़रूरत थी। तो वहाँ मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, तो मेरी ज़िम्मेदारी थी वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रेस रिलीज़ होती है अंग्रेज़ी में, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके उनकी वेबसाइट पर अपडेट करना है। INS ने एजेंसी से वो काम ले रखा था, तो वो ज़िम्मेदारी मुझे दी गई, या उर्दू में है तो उसको अंग्रेज़ी में करना है। लेकिन खबरों

0: के डायरेक्टर हैं मौलाना बुरहानुद्दीन साहब। तो मौलाना बुरहानुद्दीन साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम वीडियो भी अच्छी बना सकते हो और तुमने जो वीडियो बनाई है अच्छी वीडियो है, तुम्हारे बोलने का अंदाज़ अच्छा है, तो तुम वीडियो पर भी काम करो। मैंने कहा तो बहुत मुश्किल है, मैंने तो ऐसे ही बना दिया था। बोले नहीं नहीं काम करो, और वीडियो बनाने के लिए तुम्हारे पास एक ऑफिस चाहिए, एक जगह चाहिए, तो मैं अरेंज करता हूँ। तो उनके इदारे की एक ब्रांच दिल्ली में भी थी, जाकिर नगर में। तो उन्होंने कहा कि वहाँ 3 कमरे हैं, एक बड़ा हॉल है, तो तुम उसमें से एक रूम जा कर के ले लो। वह उन्होंने लाइट लगवा दिया, कुछ बैनर वगैरह लगवा दिया, और वो रूम मेरा हो गया। तो मैं जा कर के वहाँ
1: पहली ऑफिस बन गई।
0: जी वो पहली ऑफिस बन गई। तो मैं जा कर के वहाँ मोबाइल से वीडियो बनाने लगा, जो मोबाइल के ऐप आते हैं उससे खुद से एडिट करना, अपलोड करना। तो लोगों ने पसंद किया बहुत ज़्यादा, हालांकि उस वक्त का जो हमारा कंटेंट है उसको उठाकर देखते हैं तो खुद देखने का दिल नहीं करता है, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, अजब अंदाज का। लेकिन लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, लोग पसंद कर रहे थे, देख रहे थे। तो फिर हम लोगों ने यूट्यूब पर आगे बढ़कर काम करना शुरू कर दिया। मैं मिलर टाइम्स को शुरू कर चुका था और INS में काम भी कर, वहाँ IOS में काम भी कर रहा था, वहाँ से सैलरी मिल रही थी। तो उसी सैलरी में से मैंने मज़ीद 2 लोगों को हायर किया, जामिया के स्टूडेंट थे, एक को न्यूज़ पढ़ने के लिए रिपोर्टर के तौर पर, एक को कैमरामैन के तौर पर। और अपनी सैलरी से मैं इन दोनों को पैसे दे रहा था ताकि काम आगे बढ़े, टीम डेवलप हो। उसके बाद कुछ लोग और आते गए, वॉलंटियर जुड़ते गए, कुछ स्टूडेंट्स आए जामिया के, उन्होंने सपोर्ट किया। और इस तरह 2019 में मिलर टाइम्स के 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने और अच्छे से इस काम को,
1: CNRC के वक्त जो है काफ़ी आप लोगों को रीच उस टाइम काफ़ी बढ़ी।
0: जी जब CNRC का जो प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस वक्त मिलर टाइम्स की रीच डायरेक्ट बढ़ गए। मतलब आप समझिए कि जब हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए और 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाने के बाद जब सिल्वर बटन आता यूट्यूब की तरफ से, तो जब सिल्वर बटन पहुँचा हमारे पास और हमने सिल्वर बटन की वो क्या बोलते हैं उसको अनबॉक्सिंग की, तो उस वक्त हमारे सब्सक्राइबर्स 3,00,000 पूरे हो चुके थे। हमारे दोस्त बोलने लगे कि पानी की तरह सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं मिलर टाइम्स के। तो फिर जो हमारा फोकस वेबसाइट पर था वो यूट्यूब पर भी अच्छा खासा फोकस हो गया, क्योंकि यहाँ भी सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, सपोर्ट मिलने लगा। और शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था या CNRC का जो प्रोटेस्ट था, तो उसको हम लोगों ने कवर किया दिल्ली में जहाँ जहाँ हो रहे थे वहाँ भी, और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हो रहे थे प्रोटेस्ट उन सब जगहों को हम लोगों ने कवर किया। कहीं पर मैं गया, मैंने कुछ और लोग जुड़ते गए, तो इस तरह ये सिलसिला बढ़ता गया।
1: ये लोगों के लिए, खुसूसन वो जवान जो हैं जो शायद आगे मीडिया में काम करना चाहते हैं या अपना चैनल शुरू करना चाहते हैं, खुसूसन न्यूज़ से रिलेटेड या जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्योंकि आपने काम शुरू किया उसमें न्यूज़ भी है, पॉलिटिक्स भी है, तो किस किस्म की मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा, ताकि हमारे व्यूअर्स के लिए क्लियर हो कि अगर वो इस रास्ते में चलते हैं तो किन टाइप की मुश्किलों को उनको फेस करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, डिजिटल मीडिया का जो दौर है तो मुश्किलात बहुत है, लेकिन जिन कामों में मुश्किलात होती है, जहाँ चैलेंजेस होते हैं, वहीं कामयाबी मिलती है। अगर किसी सफ़र में मुश्किल नहीं है तो फिर उस सफ़र में कामयाबी भी नहीं मिलती, तो मुश्किलों के बाद कामयाबी आती है। तो डिजिटल में मुश्किल ऐसी है कि आप समझिए कि समंदर है और एक तख्त समंदर की सतह पर है, और ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी जा सकता है। आपका एक पांव ऊपर है तो आप महफूज हैं, और पांव आपका नीचे गया तो आप समंदर में गर्क हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो सोशल मीडिया का ऐसा ही है, लेकिन मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों को हमें हल करना होगा। सोशल मीडिया पर लोग आराम से काम कर सकते हैं, ज़रूरत क्या है कि सोशल मीडिया की जो गाइडलाइंस है, उनका जो तरीक़ेकार है, हमें उसको सीखना है। उनकी तरफ से पाबंदियाँ हैं तो हमें उनके उसूल को फॉलो करके ही चलना है। हमें उनके साथ भी खेलना पड़ेगा, अगर वो हमारे साथ खेल रहे हैं तो थोड़ा सा हमें उनके साथ भी खेलना है, कहीं पर वर्ड्स को बदलना है। और जो चैलेंजेस, सबसे पहले जो चैलेंजेस होता है फ़ंड का होता है, पैसे का होता है, ये हल हो जाता है अगर आप खुलूस के साथ काम कर रहे हैं। आपका काम लोगों को पसंद आएगा तो यकीनन लोग सपोर्ट करते हैं और करेंगे। दूसरा मसला होता है कंटेंट का। तो कंटेंट आप क्या अगर अच्छा लाते हैं, अगर आपके कंटेंट में क्वालिटी है, अगर आप सच्चाई सामने लाते हैं, तो मुझे लगता है कि आवाम को पसंद आता है। और कोई भी मीडिया हाउस आवाम के ज़रिए ही चलता है। अगर बहुत अच्छी आपकी क्वालिटी है, बहुत अच्छी आपकी वीडियो है, और अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लोग देख नहीं रहे, तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता है। तीसरा जो इसमें चैलेंज आता है टीम का, कि आपके पास अच्छे अफराद हों, अच्छे जहन वाले हों, अच्छी नॉलेज रखने वाले हों, ख़ासतौर पर जो मुस्लिम

0: मीडिया हाउसेज हैं उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज का होता है कि उनको सही आइडियोलॉजी वाले सही मिजाज रखने वाले अफराद नहीं मिल पाते। अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बच्चे मास मीडिया करके आ रहे हैं, दूसरे शुबों से करके आ रहे हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट से करके आ रहे हैं, अब वो उसी धारे से आते हैं तो उनको इस्लाम की बेसिक नॉलेज नहीं होती, उनको इस्लामिक असलाहत के बारे में मालूम नहीं होती, तो जिसकी वजह से वो भी ख़बरों को उसी अंदाज़ में लिखते हैं, पेश करते हैं जो गोदी मीडिया करता है या जिसके ख़िलाफ़ हम अपना एक मीडिया शुरू करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अभी दो दिन पहले की मिसाल लूँ कि अब हमारी टीम में कई लोग हैं वो अच्छे अच्छे जो मीडिया इंस्टीट्यूट है वहाँ से पढ़ कर के आए हैं। अब जमात इस्लामी की खबर है बांग्लादेश की, अब उन जमात इस्लामी इस वक्त चार अलग अलग इलाकों में है, पाकिस्तान में भी जमात इस्लामी है, बांग्लादेश में भी है, कश्मीर में भी और इंडिया में भी है। अब सबका लोगो अलग अलग है, सबकी पहचान अलग है, अब जिनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है सबको एक ही समझेगा। अब उसने तस्वीर कहीं और की लगाई, लोगों किसी और जमात का लगा दिया तो ऐसे अफराद को होना बहुत ज़रूरी है जिनको मिल्लत के बारे में भी पता हो, मिल्लत की सारी तारीख का पता हो, तो ऐसे अफराद बहुत कम मिल पाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मदरसा वालों का जर्नलिज़म में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिनको इस्लामी तारीख का पता है, इस्लामी आइडियोलॉजी का पता है, जो फ़िका जानते हैं, हदीस जानते हैं, तो बेहतर अंदाज में ख़बरों को पेश करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो ख़बरें टेलीविज़न चैनल पर आती है तो तमाम ख़बरें मुसलमानों के इर्द गिर्द होती है, इस्लामी असलाहत या इस्लामी तालीमात के इर्द गिर्द होती है। फ़र्क इतना होता है हमारे में और उनमें कि वो निगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं और हम उसको पॉजिटिव अंदाज में पेश करते हैं या हम सच्चाई बताते हैं। तो अब अगर हम उसको काउंटर कर रहे हैं, उनके झूठे प्रोपेगेंडा का हम जवाब दे रहे हैं, तो हमें सही इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, जो सही टर्म है वो उसकी हमें मालूमात होनी चाहिए, तो ये कमी रहती है।
1: एक और चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, क्योंकि आप न्यूज़ कर रहे हैं, तो उस हवाले से क्या जवानों को पैगाम देंगे कि क्या मुश्किलें आ सकती हैं, उस हवाले से भी अगर आप कुछ कहना चाहें? या अगर
0: यकीनन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो नज़र रहती है, आज के दौर में ख़ासतौर पर इंडिया में सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट जा रहा है हर एक कंटेंट पर हुकूमत की नज़र है। PIB ने बाज़ाब्ता एक मुस्तकिल डिपार्टमेंट बना दिया है और उस डिपार्टमेंट का काम ही है कि सोशल मीडिया पर आने वाले तमाम कंटेंट पर नज़र रखना, ख़ासतौर पर YouTube पर और Twitter पर बहुत सख्त नज़र रखी जा रही है। और इंडिया में मसला क्या चल रहा है कि एक तरफ हुकूमत चाहती है कि सोशल मीडिया के लिए भी रजिस्ट्रेशन का कानून लाया जाए, फिर इसकी मुखालफत होती है और हुकूमत को भी लगता है कि अगर हम कोई कानून लेकर आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन का तो हमारा जो एजेंडा पूरा हो रहा है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। तब हुकूमत ने क्या किया है कि एक बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट बना दिया है और जितने लोग सोशल मीडिया पर न्यूज़ का काम कर रहे हैं उन सबको हुकूमत ने कह रखा है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने चैनल की डिटेल्स, लिंक सब कुछ हमें दे दीजिए, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे रब्ता करेंगे। और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है जब उन्होंने कोई गलत थंबनेल लगाया है, कोई गलत खबर शाया की है, खबर सही है लेकिन मिनिस्ट्री को लगता है कि ये गलत है, तो उन्होंने नोटिस भेज करके फ़ोन करके थंबनेल को चेंज करवाया है, टाइटल को बदलवाया है या ख़बरों को बदलवाया। खुद हमारे साथ कई मरतबा ऐसा हो चुका है, कई मरतबा हम अड़े रहे, मामला काफ़ी ख़राब भी हुआ। तो उनकी मुकम्मल तौर पर नज़र रहती है और अगर कहीं पर भी कोई ऐसा मामला सामने आता है जिससे हुकूमत को नुकसान पहुंचता है, सरकार की बदनामी होती है, BJP की बदनामी होती है, तो फिर वो उन चैनलों को डिलीट करवाते हैं, नोटिस इशू करते हैं, बैन करते हैं। और इस वक्त इंडिया में दो तीन तरीके से सरकार इस काम को कर रही है। पहला तो ये कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, खा वो मेटा हो, यूट्यूब हो, एक्स हो, पहले ये था कि ये सिर्फ अपनी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे थे या इनकी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है सरकार की गाइडलाइंस को नहीं मान रहे थे, लेकिन अब इंडियन हुकूमत ने उनको मजबूर कर दिया है कि अगर आपको इंडिया में सर्वाइव करना है तो जो हमारी शरायत है आप उनको मानिए। तब होता क्या है कि सरकार को अगर फेसबुक का कोई पेज पसंद नहीं है या यूट्यूब का कोई चैनल पसंद नहीं है तो हुकूमत यूट्यूब से, मेटा से कहती है कि ये चैनल है आप इसको सस्पेंड करो, और इनको करना पड़ता है। अगर ये नहीं करेंगे तो उनकी तरफ से है कि आप बैन किए जा सकते हो, टिकटॉक को हमने कर दिया है। तो इस मामले में मेटा सबसे ज़्यादा सरकार के दबाव में काम कर रहा है, एक्स भी करता है, लेकिन एक्स की तरफ से कई मरतबा बता दिया जाता है कि आपका अकाउंट हमने सस्पेंड किया है क्योंकि आपकी सरकार ने हमें इसको सस्पेंड करने के लिए कहा है, और उनकी बात मानना ज़रूरी है। यह अलग बात है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ है, हमारी सोच के ख़िलाफ़ है। YouTube

0: भी एक मरतबा ऑप्शन देता है रिव्यू का, लेकिन मेटा बिल्कुल भी नहीं देता। दूसरा तरीका सरकार ये कर रही है कि सरकार
1: यहाँ पर आप कंटिन्यू करेगा दूसरा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हकीकत में उन लोगों की भी कोई पॉलिसी नहीं है, फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम
0: बिल्कुल कोई पॉलिसी नहीं है, वो सरकार के मुताबिक मतलब
1: नहीं, वो खुद भी दुनिया में, इंडिया को छोड़ दें, दुनिया भर में भी जो फलस्तीन गाजा मजलूमों की जब बात आती है तो उनके यहाँ कोई पॉलिसी नहीं रहती है एपस्टीन फाइल्स, ये सब चीज़ हमारे लिए क्लियर है, हमारे व्यूअर्स के लिए भी क्लियर है कि फेसबुक हो चाहे जो भी वेस्टर्न कंट्रीज कंपनीज हों उनसे कोई भी तवक्को नहीं रखी जा सकती।
0: बिल्कुल, मैं अपना तजर्बा बता दूं, आपने इसको आगे बढ़ा दिया। अभी एक हफ्ता पहले मिलर टाइम्स की एक वीडियो को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया और स्ट्राइक लगा दिया चैनल पर, और वीडियो क्या थी, वीडियो थी हिस्ट्री ऑफ हमास, हमास की हिस्ट्री पर एक वीडियो थी और वीडियो यूट्यूब पर अपलोड थी, 20-22 मिनट की वीडियो थी, उस वीडियो को यूट्यूब ने डिलीट करके स्ट्राइक लगा दिया और कहा कि अगर अगले 90 डेज में दोबारा आप इस की तरफ से इस तरह की कोई वीडियो अपलोड हुई तो आपके चैनल को परमानेंट डिलीट कर दिया जाएगा। अब उस वीडियो में कुछ भी नहीं है, हम की हिस्ट्री है, तारीख है। अब YouTube कहता है कि आप हमको दहशतगर्द कहो, अगर आपने वीडियो में हमको ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा, दहशतगर्द तंजीम नहीं कहा, या आपने इस तरह वीडियो को पेश कर दिया जिससे लगे कि एक फ्रीडम फाइटर है, तो वो कहते हैं हम आपको बैन कर देंगे। अब वो कर दिया और उसकी वजह से हमारे चैनल की रीच डाउन कर दी। मिलर टाइम्स का एक और चैनल था उर्दू में, उस पर हम लोगों ने दो वीडियो बनाई फलस्तीन पर और उस चैनल को ही बस अब तब सस्पेंड कर दिया, मोनेटाइजेशन बंद कर दिया। फेसबुक ने 2021 में हमारा एक पेज था मिलर टाइम्स का, 1 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हो चुके थे, 2021 की बात है, और जब दिल्ली दंगा हुआ था 2021 में तो उसके हम लोगों ने ग्राउंड पर जाकर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की थी, हमारे कैमरे तोड़े गए, पुलिस ने कई सारी वीडियोज़ को डिलीट करने के लिए कहा, क्योंकि मस्जिदों को जो जलाया गया था, 8-10 मस्जिदें थी, तो उनकी जाकर के हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, हमारे पास ओरिजिनल वीडियोज़ थी, तो वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, फेसबुक पर मिलियन में लोग उसको देख रहे हैं, 50 मिलियन 60 मिलियन लोग, तो हुकूमत ने फेसबुक को कहा कि आप इस पेज को डिलीट करो और फेसबुक ने कोई भी वजह बताए बगैर उसको डिलीट कर दिया। और अभी तक फेसबुक कोई वजह नहीं बता रहा, सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है उसका, लेकिन फेसबुक की तरफ से गोलमोल जवाब। तो ये मामला है कि उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, जहाँ जिस सरकार उनकी जैसी बनती है वैसे वो करते हैं, खासतौर पर
1: पॉलिसी में निफाक जो है
0: वो वाज़े है,
1: यानी असल उनकी पॉलिसी है निफाक की पॉलिसी है।
0: देखिए उनकी पॉलिसी बस इतनी है कि उनको अपना एजेंडा चलाना है, ये बात याद रखनी चाहिए। तो सोशल मीडिया एक टूल है, लेकिन यहाँ मुकम्मल आज़ादी है या इनको कोई परमानेंट उसूल है, या सोशल मीडिया कोई मजलूमों की आवाज़ हम बना लें तो इस पर वो अमल नहीं करते हैं
1: जब तक, लेकिन हमारे लिए मैदान भी यही है, ये प्लेग्राउंड नहीं है, बैटल ग्राउंड है। बैटल ग्राउंड में आप आते हैं तो उसके रूल्स हैं, आप उसके हिसाब से देखते हैं चीज़ों को, और आपके लिए क्लियर होना चाहिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो मीडिया में काम करना चाह रहे हैं इनके बारे में सॉफ्ट हार्ट नहीं रखें, ये लोग वो हैं जो लोग हम बैटल ग्राउंड में हैं जिनसे मुकाबला करना है।
0: अब कुछ भी हो सकता है, मतलब आप इसको अपनी दुनिया मत समझिए।
1: हाँ,
0: मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि यूट्यूब पे 2 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वही हमारी दुनिया है, मैं ये सोच कर चल रहा हूँ कि कभी भी चैनल बैन हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर एक सेकंड में जा सकते हैं, और उस वक्त मायूस नहीं होना है बल्कि दोबारा कोशिश करनी है। अब मेरे साथ हो चुका है, 1 मिलियन फॉलोवर 2021 में हम लोग शुरुआत कर रहे थे और एक सेकंड में कोई वजह बताए बगैर फेसबुक ने पेज को डिलीट कर दिया, लेकिन हम लोग हौसला नहीं हारे, हम लोग लगे रहे। जो हमारे मुखालफिन थे वो कह रहे थे अब तो ख़त्म शम्स तबरेज़, मिलर टाइम्स ख़त्म, लेकिन हम मुस्कुराते रहे। तो यही सोच कर चलना है आपको कि आपको हौसला नहीं हारना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो दूसरी वजह है सरकार की, वो मैं बता रहा था कि सरकार कई मरतबा क्या करती है कि सरकार किसी यूट्यूब चैनल को बोलती है, यूट्यूब को, गूगल को, कि आप इसको बैन करो। अब गूगल की तरफ से कहा जाता है कि इसमें बैन करने की कोई वजह नहीं है, एक लिमिट है आपकी बात मानने की, आपको हम नहीं मानेंगे। तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि फिर हुकूमत उसको इंडिया में बैन कर देती है, तो इंडिया में आपका चैनल बैन है, ईरान में उसको देखा जा सकता है, कहीं और देखा जा सकता है, इंडिया में बैन है। और सरकार इस पर भी लगातार अमल कर रही है, एक्स को इसी तरह बैन किया जा रहा है, मेटा तो खैर सरकार के सामने बिल्कुल झुका हुआ है, सजदरेज है, वो जो सरकार कहती है उसको मेटा मानता है। तो इस तरह के चैलेंजेस है, इस तरह के मसाइल हैं कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नज़र रखती है, कभी सरकार आपके चैनल को बैन कराएगी, कभी इंडिया में बैन
1: कराएगी, लोकेशन में बैन
0: होगा, उसके अलावा क्या होगा कि आप पर FIR भी होगी डराने के लिए। कभी किसी मामले में जहां कोई वजह नहीं होती FIR करके रख दिया जाता है और आपको खबर भी नहीं होगी कि आप पर कोई FIR हो चुकी है। अब कभी आप बड़े पॉपुलर हो गए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, कम्युनिटी का फ़ायदा हो रहा है, तो सीधे पुलिस

0: आएगी, नोटिस लेकर के आपको गिरफ्तार कर लेगी। आप पूछेंगे किस मामले में, तो कहा जाएगा 5 साल पहले की आपके नाम पर एक FIR मौजूद है और आप इस मामले में गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो हर एतबार से सताया जा रहा है। अब इससे बचने का तरीका क्या है, सोल्यूशन क्या है? तो मुझे लगता है कि जो मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़ के रहना चाहिए हमारे लोगों को, जैसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है या DG पब है, कोगिटो मीडिया फाउंडेशन है, कुछ और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो हमें मेन स्ट्रीम का हिस्सा भी बनना चाहिए, उनके साथ जुड़ के रहना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल है। उसके अलावा हमें हालात पर नज़र भी रखनी चाहिए किस तरह के हालात है नहीं है, और जो जर्नलिज़म की गाइडलाइंस है, जो उसके एथिक्स है, उसको हमें फॉलो भी करना चाहिए।
1: यानी वही लॉज के अंदर रह के आपको, जो कानून है उसके कानून के तहत आपको रह के आपको काम करना चाहिए। तो ये आपकी फ़िलहाल एक जो मीडिया में काम करना चाह रहा है जवान, एक जर्नलिस्ट है या मीडिया में काम करना चाह रहा है, उसको नसीहतें। लेकिन सबसे अहम चीज़ मुझे लगता है इसके अंदर के ना डरना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर खौफ आपके अंदर है, जैसे हमारी मजलिसों में हमेशा एक नारा लगता है, ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है। यानी जब तक हम इस ईमान के लेवल पे नहीं आएंगे कि खुदा के अलावा किसी से नहीं डरना है, ठीक है, मुश्किलें आएंगी तो आएगी। इमाम हुसैन को मुश्किल आई, करबला में मुश्किलें आईं, मसलन रसूल अल्लाह की अस्हाब को ज़िंदगी के अंदर जंगे बद्र में, जंगे उहद में मुश्किलें नहीं आई थी क्या?
0: बिल्कुल
1: मुश्किलें आई थी,
0: मुश्किलों से भरी।
1: जी, तो वो मुश्किलों से ही मुकाबला करना है। तो पहला ये माइंडसेट कोर इस्लामिक आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे होना चाहिए कि भाई ये रास्ता है, यहाँ पर मैं आया हूँ मुकाबला करने के लिए। तो जब आप मुकाबला करने आए तो कोई आपको फूल से थोड़ी ना वेलकम करेगा।
0: सख्तियों को सोच लीजिएगा, अगर आप मीडिया के मैदान में आए हैं और आपका एक मिशन है, आपका एजेंडा है, आपका मकसद है, आप आम मीडिया हाउसेस की तरह नहीं हैं, तो हर कदम पर कांटे बिछे हुए हैं, हर जगह मुश्किल है, दुश्वारियाँ हैं, और इन्हीं रास्तों से गुजर कर आपको आगे बढ़ना होगा, और बेशुमार परेशानियां हैं। मतलब कोई भी अच्छा काम अगर करता है उस पर मुकदमा होगा, FIR होगी, आपको ट्रोल किया जाएगा, आपको गालियां दी जाएगी, आपके चैनल को सस्पेंड किया जाएगा। और अगर ये सब उसी वक्त होगा जब आप एक आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, एक मिशन के साथ काम कर रहे हैं, और जो लोग भी इस मिशन के साथ काम कर रहे हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो बिल्कुल सोच कर ही आना चाहिए। मैं अपना एक वाक्य बताता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम मुझे एक साहब की तरफ से नोटिस आई, और बहुत ख़तरनाक नोटिस आई कि मिल्ला टाइम्स के ज़रिए दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है, NISS की जाँच होनी चाहिए, ED को जाँच करना चाहिए, 7-8 तरह के संगीन इल्ज़ाम लगाए गए। मैं तो डर गया नोटिस देख करके। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, नोटिस किसी काम की नहीं होती, आप डस्टबिन में इसको डाल दो, मीडिया हाउस के दफ्तर को नोटिस आती रहती है। एक वकील साहब के पास गया तो वो जानते थे कि मैं मदरसा बैकग्राउंड से हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जेल जाने के लिए तैयार हो तुम? तो मैंने ज़रा सा सोचा, मैंने कहा हाँ तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर जेल जाने के लिए तैयार हो तो फिर जाओ, अपना काम करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और अगर जेल जाने के लिए तैयार नहीं हो तो जाओ किसी मस्जिद में इमामत का फरीज़ा अंजाम दो, मीडिया में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो मीडिया का जो मैदान है ना, ये खौफ से, ख़तरे से, डेंजरस से भरा हुआ है। किसी भी वक्त आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, किसी वक्त आप पर FIR हो सकती है, और आपको हमेशा ये सोच कर चलना है कि ये होगा ही।
1: लेकिन इसके साथ आपको एहतियात भी करना है।
0: जी
1: जी, इसका मतलब ये नहीं कि मसलन हम पागलों की तरह सर जाके दीवार पे मार दें, बोलें कि भाई सर तो फूटना ही है एक दिन, अब मैं खुद ही मार लूँ सर दीवार पे। तो इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लामिक रैशनल रिलीजन है, आपको रैशनैलिटी, अक्ल व अक्लानियत के साथ सिखाता है कि जब जो, जैसा आपने कहा कि कानून है, जर्नलिज्म के कानून है, हमारे मुल्क के कानून है, हम जर्नलिज्म और अपने मुल्क के कानून के मुताबिक अपना अमल करें, कोई भी चीज़ ऐसा ना करें जो हमारी बाउंड्री से क्रॉस हो रही है। जो कुरान ने भी मेंशन किया है बार बार कि आपको अदल व इंसाफ से रहना, चाहे दुश्मन के मुकाबले में ही क्यों ना हो। यानी कभी भी इस्लाम ने नहीं कहा है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करो। तो ये हमारे लिए कुल्लन एक कानून है। हम अगले पार्ट की तरफ अगर चलें तो वेस्ट एशिया, जिसे मिडल ईस्ट भी कहते हैं, आयतुल्लाह खामेनेई ही कहते हैं, मिडल ईस्ट नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो कहते हैं मिडल ईस्ट क्या है कि वहाँ से वो बैठ के दुनिया को देख रहे हैं वेस्ट से। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई वो ईस्ट है और ये मिडिल ईस्ट है और हम दुनिया के सेंटर हैं, है ना। तो हम किसी को मिडिल ईस्ट नहीं मानते, हम मानते हैं ये वेस्ट एशिया।
0: बहुत अच्छी वजह बताई आपने।
1: जी, ये वेस्ट
0: अमल करना है हमें।
1: ये वेस्ट एशिया है। तो यहाँ पर हम लोग जो वेस्ट एशिया की बात करते हैं, इसकी आप मुसलसल आप रिपोर्टिंग करते हैं, الگ الگ واقعات ہوئے ہیں خود غازہ کو لے کے اب تک جو ہیں، ایک کلن آپ کا

0: पिछले 2-3 साल में, खुलासे में आपका क्या तज्जिया रहा, आपकी क्या फीलिंग रही, क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है?
1: बिल्कुल, 3 साल तो तकरीबन हो रहे हैं और पिछले 3 साल से हमने भी बहुत कंटिन्यू नज़र बनाए रखी है, रिपोर्टिंग की है, हर छोटे बड़े वाक़यात को हमने देखा है। और पिछले 3 सालों में नुकसान के बावजूद, तबाही के बावजूद, बर्बादी के बावजूद, मुझे लगता है दुनिया भर के मुसलमानों को गज़ा से, ईरान से हौसला मिला है, उम्मीद मिली है, तवानाई मिली है कि सब कुछ लुट जाए, सब कुछ तबाह हो जाए, फिर भी असल ताकत ईमान की है, असल ताकत खुदा की है, वही सुपर पावर है। और हौसला नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ख़ासतौर पर गज़ा पट्टी के लोगों ने पूरी दुनिया के ईमान को तरोताज़ा किया है,
0: मुजीज़ा उन लोगों ने किया,
1: बिल्कुल मुजीज़ा कर दिया है। मतलब हिंदुस्तान के मुसलमान जिस तरह मुश्किलों से दो चार थे, किसी एक की लिंचिंग हो गई 30 करोड़ में, पूरा 30 करोड़ खौफ का शिकार, किसी एक जगह फसाद हो गया, पूरे 30 करोड़ मुसलमान सोच रहे कितने बदतर हालात हो गए, फ़लस्तीन बन गया, ये बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। लेकिन जब गज़ा पट्टी को लोगों ने देखा है, निगाहों से मुशाहदा किया है, तो लगता है कि भाई कुछ भी हमारे साथ नहीं हो रहा है। और वो किस तरह तैयारी कर रहे थे कितने सालों से, मतलब आता है कि कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पहाड़ है, जहाँ समंदर है, उबर खाबर इलाका है, तो वहाँ जंग लड़ना आसान होता है, गोरिल्ला जंगें लड़ी जा सकती है, दुश्मन को चकमा दिया जा सकता है। लेकिन गज़ा पट्टी एक हमवार इलाका, चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ, और उन्होंने इतनी गहरी सुरंगें बना रखी है कि अभी तक इसराइल की एजेंसियाँ अंदाज़ा नहीं लगा सकी है कि कब से सुरंगें बनी थी, कितने बड़े उनके टनल है, कब तक बनाए गए, कहाँ से। मतलब 2 साल तक कंटिन्यू सारी चीज़ें बैन थी, फिर भी कैसे वो जिंदा है, क्या खा रहे हैं। तो सच में पूरी दुनिया हैरान है और ईमान
0: एक
1: को
0: चीज़
1: ताजगी
0: मुझे
1: मिली
0: लगता
1: है।
0: है कि वो पूरी दुनिया में, हत्ता नॉन मुस्लिम्स ने भी एक कुरान की आयत को हिफ्ज़ कर लिया, हसबुनल्लाह व नेमल
1: वो नेमल
0: वकील।
1: वकील, बेशक।
0: ये आयत जो मुझे लगता है कि, हत्ता मैंने बहुत सारे क्रिश्चियन कंटेंट क्रिएटर्स को देखा हूँ कि वो कंटेंट बना रहे हैं गाज़ा के बारे में और बार बार कह रहे हैं हसबुनल्लाह व नेमल वकील।
1: हसबुनल्लाहु व नेमल वकील,
0: यानी
1: बेशक।
0: वाकई के अल्लाह की ज़ात पे इतना भरोसा रखना, दो बच्चों को इस तरीके से माँ का उठाना और कहना कि वाकई। तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि यही हौसला जो है हमारे मुल्क में भी, हमारे मुल्क के मुसलमानों के लिए भी, कि उम्मीद ना हारना।
1: उम्मीद न हारना।
0: हाँ, दुश्मन के मुकाबले में, जैसे कुरान में फिरौन का वाकया है कि फिरौन बहुत ताकतवर था। आयतुल्लाह खामेनाई ने रिसेंटली स्पीच में कहा था कि फिरौन को जब खुदा ने गर्क किया, उस वक्त फिरौन अपनी ताकत की औज पे था, यानी उसको औज के वक्त खुदा ने गर्क किया है। तो ये हमें पैगाम देता है कि दुश्मन की ताकत देख के आप उबूहत में ना आए।
1: नहीं, ये जो 2 वाक़यात हुए ना, मतलब ये हमने किताबों में पढ़ा था कि फिरौन के पास ताकत, पूरा लश्कर, और दरिया नील में डूब गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम को फतह मिली, और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं किताबों में, खुद हमारी तारीख। लेकिन ये 2 वाक़यात ना हम लोगों ने अपनी निगाहों से देखा, एक गज़ा का कि इसराइल ने जो भी हदफ तय किया था, एजेंडा तय किया था, भले ही गज़ा पट्टी को उसने तबाह कर दिया, 70,000 को शहीद कर दिया, लेकिन इसराइल अपने एक भी हदफ में कामयाब नहीं हो सका। और जंगों में असल यह है कि हदफ में आप कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, तबाह करना, बर्बाद करना
0: ये भी
1: असल
0: इम्पोर्टेंट
1: नहीं
0: है
1: है,
0: कि आप पूरी दुनिया ने मिल के
1: मिल करके, जी,
0: गाज़ा के इरादे को नहीं बदल सका।
1: इरादे को नहीं
0: बहुत
1: बदला,
0: अहम चीज़ है कि
1: बिल्कुल
0: इरादा उनका आखिरी दिन तक, जब वो नेगोशिएशंस हो रही थी, अमेरिका और पूरी दुनिया मिलके कुछ कह रही थी, कह रहे थे हम नहीं मानेंगे। यानी
1: बिल्कुल
0: खुद ये इरादे का होना बहुत अहम है।
1: बहुत अहम है। और दूसरा, ईरान और इसराइल के दरमियान जो पिछले साल 12 दिनों तक जंग हुई जून में, तो 2025 की जो जून की जंग है ना, पूरी दुनिया को लग रहा था कि इसराइल बहुत ताकतवर है, वो एटमी ताकत से लैस है, अमेरिका उसके साथ है, और कोई इसराइल का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कोई इस पर हमला नहीं कर सकता है, टेक्नोलॉजी में कोई
0: मुकाबला
1: उसके
0: नहीं।
1: दूर दूर तक नहीं है। लेकिन जब ईरान ने जवाब देना शुरू किया 24 घंटे के बाद, और इसराइल के हर खित्ते को निशाना बनाया, हर पॉइंट को टारगेट किया, और ईरान के मिसाइलों की वो ताकत है कि आज जब इसराइल शर्तें लगा रहा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ ने भी पूरी दुनिया के मुसलमानों को सरप्राइज़ किया, हैरान किया। जो कहा जाता था कि मुसलमान टेक्नोलॉजी में आगे नहीं हैं, या जो जदीद हथियार है जिसकी आज के कौम को ज़रूरत है, या कुरान ने जो कहा वाइदुल्हम मस्तात मिन क़ुवती व मिरबातिल खैल,

0: तो इस पर मुस्लिम दुनिया में अमल नहीं हो रहा। तो जो कॉन्सेप्ट था ना, इस कॉन्सेप्ट का भी खात्मा हुआ कि मुसलमान आज इस पर अमल कर रहे हैं और चाहे तो अमल कर सकते हैं। अगर जिनके पास ये ताकत नहीं है, जिनके पास ये हथियार नहीं है, तो उन्होंने कोशिश नहीं की है, उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया है, उन्होंने ईमान की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। ईरान ने किया तो उसका असर, मतलब अब तक मेरे ख्याल में 1979 से अब तक डायरेक्ट अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हुई,
1: डायरेक्ट नहीं हुई थी,
0: इनडायरेक्ट हुई, कभी सद्दाम हुसैन के ज़रिए हुई या किसी और मुल्क से हमला करवाया गया या धमकियाँ दी जा रही थी। सुन्नी वर्ल्ड को भी लगता था कि ईरान शायद ऐसी धमकियाँ दे रहा है, ज़ुबानी बातें कर रहा है, ताकत नहीं है। लेकिन इस मरतबा जो ईरान ने अमरीका के फौजी अड्डे पर हमला कर दिया, और इसराइल पर हमले का मतलब भी हमारे नज़दीक है वो अमरीका पर हमला है, क्योंकि अमरीका की छावनी
1: है,
0: तो इस बात ने पूरी दुनिया के नज़रिया को, उनके व्यू को चेंज किया कि ताकत है। और सब ईरान ने पाबंदियों के दरमियान हासिल किया, मतलब एक होता है कि किसी मुल्क पर पाबंदी नहीं है, सेक्शन नहीं है, तो वो चीज़ें तैयार कर सकता है खुफिया तरीके से। ईरान तो पाबंदियों के दौरान ही करता रहा। तो ये दो चीज़ें जो है ना, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को हैरान करने वाली है, और हौसला मिला है, हिम्मत मिली है कि हमारे अंदर दुश्मन से लड़ने की सलाहियत है, दुश्मन से मुकाबला करने का हमारे अंदर हौसला है, और हम लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं।
1: तो शम्स भाई बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी हमने अलग अलग टॉपिक्स पे गुफ्तगू की, बहुत सारी बातें रह भी गई हैं इंशाल्लाह हमारे व्यूवर्स के लिए, इंशाल्लाह बाद में भी गुफ्तगू करते रहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, स्टूडियो में आए। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारे व्यूवर्स को पसंद आया होगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया बहुत बहुत आगा।
0: आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया, और मेरी गुजारिश है कि जो सबील मीडिया है और मुख्तलिफ जो इसके सेक्शन हैं, सब आगे बढ़े। मेरा पूरा सपोर्ट है आपको, आपकी पूरी टीम को, और आपका सपोर्ट हमें चाहिए। और हमारी कोशिश ये होगी, एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, उन सबको आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला मिजाज बनाना है, एक दूसरे को अपना हरीफ नहीं हलीफ बनाना है। जो हमारी मीडिया कम्युनिटी है, आपस में बहुत ज़्यादा हसद है, जलन है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना, एक दूसरे से लोग कांटेक्ट नंबर तक शेयर नहीं करते।
1: एक आलिम दीन ने मिसाल दी थी इसी बात को कंप्लीट करने के लिए,
0: जी
1: कहते हैं दो नज़रिए हैं, एक ये है कि दुकानदारी वाला नज़रिया है ना, दुकान में मसलन मैंने मेरी दुकान थी, मेरे बाजू में किसी ने दुकान डाल दिया, अब मुझसे सेम दुकान है, अब मैं रोज़ सोचता हूँ इसने दुकान डाल दिया, मेरा धंधा नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं वाकई खुदा पर भरोसा करता हूँ तो वो भी चलेगा, लेकिन वो छोड़ दें तो उसको लगता है बाजू में। लेकिन अगर आप जंग लड़ रहे हैं और आप सिपाही हैं और आपके बाजू में एक और सिपाही आ गया जो दुश्मन से लड़ना चाहता है, तो अब आपको मायूसी होगी, उम्मीद होगी,
0: उम्मीद होगी,
1: उम्मीद होगी,
0: हौसला मिलेगा।
1: अगर हम दोनों समझते हैं कि हम इस्लाम के सिपाही हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो हम में कंपटीशन नहीं है, कोलैबोरेशन होना चाहिए।
0: बिल्कुल, यही कोलैबोरेशन का जो कल्चर है ना
1: जी,
0: हमें इसको फरोग देना है, और इंशाल्लाह तआला लोग समझेंगे इसको,
1: इंशाल्लाह,
0: इंशाल्लाह
1: हम लोग जैसा आपने हमें कहा वैसे हम भी हाजिर हैं इंशाल्लाह। तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो यंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो काम करना चाहते हैं, आपके पास अगर आइडियाज़ हैं, सजेशंस हैं, तो हम लोग हाजिर हैं इंशाल्लाह, साथ में मिलके काम करने के लिए, साथ में मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम सब मिलके उम्मत मुस्लिमा के लिए खादिम के तौर पर उनकी खिदमत कर सकें। शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह पॉडकास्ट कैसा लगा आप फीडबैक में ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए, और अगर कोई चीज़ को अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, कुछ सवालात आपके हैं शम्स भाई से, हमसे, टीम से, तो ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत, इल्तमास से दुआ, खुदा हाफिज़।
2: अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज।
3: When your family sleeps, your wiring keeps working. So make sure the veins of your house are strong enough to protect it. Euro cables built into your walls, built for your family. Buy Euro cables, stay safe.